श्री हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर ह

देह अरोगता बख्शनी, परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी, आत्मक शांति लई स्वर्गवासी नीला से

भूत बन चार छित छौना सब दूधा थारी पौन के हरि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के फछय धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंछ की बढ़ैया देत।

वेद वेद योगतेव नेत नेत कह कहत है। नाजत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करयो ही करत है। चंद्रमात शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी।

जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से मही दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान वो जो दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरत रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट भेष पोसती अनेक तानी वावत है। शीश कहो कहा भय मल जप काढ़त अनेक दंड सो दोनों दंडौत अस टांग अथ तीस कहो कहा भय रोगी जो पे डाल्यो रहो उर्द मुख मान तेना मुंडने हो रायो आद ईश को कामना अधीन सता दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीश पटकत जग कान में खजूर धस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सो आग गोचर ये फल फूल को फछैया सता बन को भ्रमिया और दूसरों न बोक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीश बिछन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोग सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोग सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाट सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजरीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जो किया बरागी बने काब हूँ सन्यास भेज बन के दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारी होके लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीतकाल कुंचर ओगधा अनेक दा पुकार ही कहा भय जो पे काल वत्र लियो कांस बीज चीर चीर चोर डाकू ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस डग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जो पे पाए तो जाप देव बूदना सदीव तुही तुम।

आग ते कनु का कोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उठ जाएंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे भच, केते प्रत्यक्ष हो।

काल के बनाए सब काल ही जवाहेंगे। तेज ज्यो तेज मैं तेज जस तेज रेन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित वू में गणत कित सुअ पे चढ़त कित दुह को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

माथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सो भूते भविखे भवाने अचित्रे नरायं नरंकं न रूपं न रेखं न लोभं न जोभं भूतं वेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद।

स्वाखं परयं पवित्रं कुनीतं गताखं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रं नमो एकतन्त्रे नमो एकतन्त्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं गंज के मंज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के।

ग्रहं कहूं देह दुखं कहूं औखति रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बाने कहूं जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि के पृष्ठ के रिष्ट बनया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार।

जेह राग न रूप न रेख रुखं जेह ताप न साप न शोक सुखं जेह रोग न शोक न भोग भोयं जेह खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जेह रचयं क्षत्रि छत्र छितं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाग न दुख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधुरु बिंद नगिंद नगं श्रेय जच्छ गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड सेत ज्योत भुजंग किए देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जातन पातन ज्योत जुतंग जेह तातन मातन भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुअंग जे यम पह किन्नर जच्छ जुअंग नर नारण पुंसक जाहि किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भवोत भविख भवान तुअंग जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रच भूम।

गुंजन गंजन आदि सुरंग जे वंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज वृतंग दे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपय सुत सिंध अधो मुख ताप तपय कई गल्पन लो तब ताप करे नहि नैक कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सभय तह एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर कोतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है देव भूल न काल फंदा फस है।

न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साध है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साग है न

न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है जन्म है अभेक है न तात है न मात है ख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न

चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा परंकन फणी फुंकारण ज्योत जिते सरथार विभरखंड दुष्ट प्रकरखंड पुष्ट ब्रह।

मूल गते रक्ता सुर आचन जुद ब्रह्माचरण हृदय नराचन धर्म प्रते श्रोणंत अचिंदी अनल विवंती जोग जयंती खड़ग थरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाव।

के बाग बबंग के भुजा फरंग के शुद्ध कते जय जय होशे मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पत दो धारण एक फटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंड।

काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पदमा पतले है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहु भात बचावे सत्र अनेक जलावत घावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप संभूहन भेट न पावे। और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जछ जंग सो दानव देव भेव तमें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जछ भुजंग सब सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। भेद कते न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जय को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अच्छेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न सा।

आसन कोट करे अष्टांग धरे मोहन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना के तेग बांध अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कूरे सी जाने पच्छम के पच्छम पछान निज काम है। महरट्टा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे देड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चेन मचीन के शीश ने आवे तिब्बत दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेद कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचाता है चिटी की चंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते

कैठा सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सेख उबार असेख संहरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे असधुजताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे।

साहेब फतेह सिंह जी पंज प्यारियो चाली मुक्तियो सरबत्र शहीदो सिंह मुरीदो सचियारियो प्यारियो सब थाई होए सहाय जिना नाम जपिया वंड छकिया धर्म हेत शीस दिते सिखी सिदक केसा सवासा संग निभाई तिना गुरमुखा गुरु दे प्यारिया सिंगा सिंगणिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जे। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੈ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ।

आख लख करोड़ सचे सतां सचे सबजोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सची पातशाह नानक सत्य आय सच जो मर्ज मैं सो कच नी कच।

सूरज पै विच चंद्र को करोड़ी चलतना अंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुनात पै विच आडाणे आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच

अंडज जेर कुत पुजा खान सित जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कैस मान सबना जिन करता करना की अचिंता बिकरणिता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टीका का तग।